नमस्ते सलाम सत श्री अकाल वणक्कम केम छो, मैं हूं आपका अपना देसी आरजे विकास और आप मुझे सुन रहे हैं 2XXFM पे और ये है 50 साल पूरे होने की सालगिरह। सो हेयर्स विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू 2XX एंड ऑल द प्रेजेंटर्स ऑफ 2XX एंड ऑल द लिसनर्स, बिकॉज यू नो व्हाट, इट्स पीपल पावर्ड रेडियो।

2004 में जब धूम फिल्म आई तो उसने बहुत धूम मचाई और इसका टाइटल ट्रैक धूम मचा ले भी बहुत धूम मचा के गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये गाना इंस्पायर्ड है जेसी कुक की 1996 की कॉम्पोजिशन मारियो टेक्स अ वॉक। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं जहां पे मैं ये लिंक शेयर करूंगा। म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज और आप सब लोग जो ये शो सुनते हैं या आप इसको कहीं पे भी सुन रहे हैं, चाहे इंडिया में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि उसकी लैंग्वेज क्या है, बिकॉज म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज। म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, उसमें वर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं, इमोशंस आप ऐड कर सकते हैं जो लोकली यू नो अटैच होते हैं उस कम्युनिटी से, उस वर्ड से, उस जगह से। लेकिन अगर म्यूजिक अगर आप आंख बंद करें अपनी और अगर आप ट्रांस में चले जाते हैं और अगर आपको वो इंजॉयमेंट मिल रही है तो लैंग्वेज शुडंट बी अ प्रॉब्लम। एनीवे, आज का जो एसीटी देसी का मैं शो आपके लिए लेके आया हूँ वो है एक रीमिक्स स्पेशल। रीमिक्स स्पेशल क्यों है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस रहे हैं वर्ल्ड में जिन्होंने अच्छा अच्छा म्यूजिक क्रिएट किया है और हमारे जो म्यूजिशियंस हैं वो आज की दुनिया के जो कोशिश करते हैं कि यू नो इंस्पिरेशन कहाँ से ले, क्योंकि सात सुर है और यू नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उतने ही है, तालें उतनी ही है, आप उसको कैसे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बिठाते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का और कैसे म्यूजिक बनाते हैं, ये डिफरेंशिएट करता है आपके म्यूजिक को एग्जिस्टिंग म्यूजिक से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको म्यूजिक बहुत पसंद आता है और आपने अगर एक गाना बना रहे हैं स्पेशली हिंदी फिल्म्स में, स्पेशली हिंदी फिल्म्स में, तो आप यू नो बहुत सारे जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं 70s, 80s, 90s और इनफैक्ट 2000 तक भी, जब कॉपीराइट्स के इश्यूज इतने नहीं होते थे तो म्यूजिक आप सुनते थे, इंटरनेट का ज़माना नहीं था, कोई कैसेट मिली या ग्रामोफोन में आपने म्यूजिक सुना, कहीं किसी पार्टी में गए, किसी वर्ल्ड में कहीं आप टूर पे गए हो, आपने यू नो म्यूजिक सुना, आपने कहा ओ या इसमें तो एक हिंदी सॉन्ग या पंजाबी सॉन्ग भी बन सकता है अगर इसकी बीट्स को मिक्स कर दिया जाए, तो आप यानी म्यूजिक डायरेक्टर मिलके सोचते थे अरे चलिए इसको यहाँ पे बनाते हैं, ये बीट्स तो अच्छी हैं, हिट है ऑलरेडी। तो ऐसे बहुत सारे गाने बने हैं यू नो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जिनको इंस्पायर्ड कहा जा सकता है बहुत सारे अलग कल्चर से, लैंग्वेज से, यू नो कंट्रीज से म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने वो म्यूजिक बनाया। तो आज का एपिसोड और आने वाला शायद एक और एपिसोड मैं आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें ये गाने मैं बजाऊंगा आपके लिए, जिसमें आप यू नो सुन पाएंगे और मैं इनकी डिटेल जो गाने मुझे लगता है जो मैंने रिसर्च की और इन्फॉर्मेशन पाई और आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें आप मेरे फेसबुक पेज जो कि है एसीटी देसी एफएम पे जाके आप देख सकते हैं वो गाने जिन्होंने हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को इंस्पायर किया हिंदी में सॉन्ग्स बनाने के लिए उन्हीं बीट्स या रिदम पे। तो आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ और ये है एसीटी देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनबरा ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर रेडियो। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम।

2001 की फिल्म प्यार तूने क्या किया और इसका भी टाइटल ट्रैक जो आया था, एक अच्छी मूवी थी, मुझे याद है मैंने ये मूवी देखी थी और यू नो काफी स्पूकी भी थी और फरदीन खान और उर्मिला मातोंडकर थे इसके अंदर, एक बड़ा साइको रोल किया था उर्मिला मातोंडकर ने। बट एनीवे ये मूवी और इसका टाइटल ट्रैक जो प्यार तूने क्या किया, ये भी एक इंस्पायर्ड सॉन्ग है जो एक्सॉर्सिस्ट 1977 की कॉम्पोजिशन से लिया गया है। इन्फॉर्मेशन और अगर आपको चाहिए तो जैसे मैंने बताया कि मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी आपको। ये सारे गाने जो मैं बजा रहा हूँ आपके लिए एसीडी देसी पे, ये बहुत अच्छे गाने हैं, हिट सॉन्ग्स हैं और इससे पता चलता है कि जैसे मैंने कहा कि म्यूजिक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज और बीट्स कहीं की भी हो, अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी धड़कन यानी कि अक्षर यानी कि इमोशंस डाल दें तो वो बीट्स किसी भी कंट्री या लैंग्वेज की हो सकती है। एक और गाना सुनते हैं एसीडी देसी पे, मैं यू गया और यू आया।

सन 2000 और उसके आसपास बहुत सारी फिल्में ऐसे बनी और प्रीतम म्यूजिक डायरेक्टर अगर आपको याद हो तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे गाने बनाए, इंस्पायर्ड बहुत सारे भी थे उसके अंदर से। बट आई थिंक जैसे मैंने बोला है कि अगर म्यूजिक अच्छा है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि म्यूजिक कंपोज करना इतना आसान नहीं है और बीट्स के साथ साथ अगर आप उसके अंदर से अल्फाज भी मिक्स कर रहे हैं और एक अच्छा कॉम्पोजिशन बन रहा है तो क्यों नहीं। यू नो, अगर ये म्यूजिक हम नहीं सुनते तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये म्यूजिक कहाँ से लिया गया है। एनीवे, वो लम्हे फिल्म जो 2006 में आई थी उसमें ये जो गाना था, क्या मुझे प्यार है या, थोड़ा गला खराब है माफ करना, लेकिन ये गाना इतना अच्छा है। जैसे मैंने बोला, प्रीतम की सारी कॉम्पोजिशंस अच्छी होती हैं और होती थी। तो ये गाना जो लिया गया है, ये लिया गया है ताक बेशाक बाय पीटर पैन, 2005 एक कॉम्पोजिशन है इस बैंड की। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी आपको, तो जाइए देखिए और वो गाना सुनिए ओरिजिनल और बताइए कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। आप है मैं ध्यानी आपके अपने देसी आज विकास के साथ और ये है एसीटी देसी।

2006 की ही एक और फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई, संजय दत्त की फिल्म, एक बहुत ही हिट मूवी रही थी और उसका एक बहुत स्लो और एक अच्छा सॉन्ग था विद्या बालन के ऊपर फिल्माया गया, जिसका टाइटल था पल पल पल। अगर आपको ये गाना याद हो तो ये गाना भी लिया गया है एक यू नो कॉम्पोजिशन से जो क्लिफ रिचर्ड की है 1961 की, और उसका टाइटल है थीम फॉर अ ड्रीम।

1994 की कॉम्पोजिशन बाय तारकन सिकिदिम, और ये गाना कॉपी किया गया था धूम मूवी में ही एक और गाने के नाम से जिसका नाम था शिकदुम शिकदुम। ये गाना अगर आपको याद नहीं है तो सुनिए और याद कीजिए ये गाना और वो फिल्म के गाने, और मैं आपके पास वापस आऊंगा एक और गाने के साथ जो बहुत ही इंडियन सुपर हीरो की मूवी थी, बहुत ही हिट गई थी, और अगर आप गेस कर सकते हैं टिल द टाइम आई कम बैक मुझे जरूर बताइए। कमेंट आप पोस्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे जाके जो कि है facebook.com/ACTACFM।

कौन जानता था कि टर्किश मिलिट्री का जो मार्च ट्रैक है वो एक मूवी, इंडियन मूवी जो सुपर हीरो की मूवी है उसके अंदर कॉपी किया जाता है और इतना हिट हो जाता है। यह मैं बात कर रहा हूं 2006 की मूवी क्रिश, और गाने का जो टाइटल है वो है दिल ना दिया। प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन के ऊपर फिल्माया गया सर्कस की सेटिंग में, अगर आपको याद हो तो अगर जरूर सुनिए। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो ओरिजिनल ट्रैक है उसको भी जरूर सुनिए। 1900 यानी 1900 में बना हुआ है ये सेडिन डेडिन, और जो टाइटल का ट्रैक है उसका नाम है टर्किश मिलिट्री मार्च ट्रैक।

डेफिनेशन इन लैंग्वेज कैन क्रिएट मैजिक इन एनी वर्ड. आप है मेरे यानी आपके अपने देसी आज विकास के साथ और ये है ACT देसी. तो सुनिए सुनाइए और लाइफ बनाइए. स्टे काम एंड